संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीजा पे ही खाहे। संत के दोखी को अवर न रखनहार, नानक संत पावे ता लै उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजा, जो पाव ईदन नहीं त्रापाए। संत का दोखी छुटा केला, जो बुआड़ तेला खेत माहे दोहेला। संत का दोखी धर्म ते रहता, संत का दोखी सद मिथ्या कहता। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पहावा सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिला सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरा ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजा ना आसा, संत का दोखी उठ चला निराशा।

द्रष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुननहार आप है एक आप विस्तार जात भाव ता श्रेष्ठो पाए अपना भाणा लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछोए आपन सूत सब जगत परोए जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी अजंत्र सबता का हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जैस राखा तैस कोई न मारा सो मुआ जिस मन हो बिसारा तिस्ता जबर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे व्याप प्रतपाला जीअन बहुपात जो जो रचयो सो तिसा त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जन लागा हरेक कै नाए तिसकी आस न मिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर भये निर्वैर अंधन पूजा है गुर के पैर एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले साध संग मिल कर हो नंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत कर हो विचार दुर्लभ देह का कर हो दहार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहा

लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, किल मिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अस तुज जपै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सब अपत कोई अड़ेल।

अकबर कथा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुनै अर गावै दुख पाप तेह निखने आवै बेसन भगत की ए फल होई आ बे आचब सकै न कोई सम

पतित पावन भगत वत्सल करुणा निदान गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोश विच सुभाए मान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ सतगुरां दी अपार रहमत सदका वडभागी गुरसिख संगतां गुरु दरबार अंदर सज रहे सुंदर दीवाना विच सुभाए मान हो के सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन दीदारे अमृतमई बाणी दा रस पिना शब्द कीर्तन सत्कार योग रागी जत्थे दी मुबारक रसना तो सरवण करके मिले हुए अमोलक मनुखा जन्म दे सवासां घड़ियां समें नूं सफल बना रहे सतगुरु रहमत करन जो पावन इतिहास श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दे शहीदी प्रसंग आपां लड़ी बार विचार रहे हाँ कि किवें गुरु जी नूं झूठियां तौहमतां ला के समें दे हुक्मरान जहांगीर बादशाह वल्लों लाहौर बुलाया गया है कचहरी दे विच सद के ते चर्चा होई सतगुरां ने हर एक कीते सवाल का जवाब दिता है।

सगल समागरी तुमरा सुतरता मते हो सो आज्ञा श्री गात मेत तुम ही ज्ञान नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याई

तारे गुर सिख मन नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोहह दर राजान पंचा का गुरे ध्यान जे को कह कर विचार करते कह करना नाही सुमार तौल धर्म दया कपूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार तलै कमन जोर जी जात रंगा के नाब सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूता कीता पसावे को कबाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती संख दातार असंख सूर मुख पखसार असंख मोहन लिबलाय तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह।

वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा सलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए बिना सो नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला हे ती सुरत न पाईया नदिया तै बाहा पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुलतान गिरह सेती माल तान कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हो न विसरहै।

स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विपूते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्ध अधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखी अत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते कृति बिने कृति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदता पवन के गौन कव जात निवारे भारी पुजान के भूपली बिद न्यापत शीस न जात बिचारे ते पय तो कहा पय भूपता अंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश देसान को बाजत ढोल मेरे दंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपता कौन गना नहीं जात बिचारे श्री बसरी भगवान भजे बिना अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दमदान सो संजम ने मानेक बसेख है वेद पुराण देव कुरान जे मीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार देख है श्री भगवान भजे बिन भूपता एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हल्ले न हल्लेंगे तोरा रीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्री पा श्री भगवान कृपा बेना त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार बिचारा सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाच कन एक सो एक देवैया दानव दे फिनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जीते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुहना पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जग सत्र सबैव लोक चपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र नराध प जौन तरे लोक को राज करेंगे कोटे स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म हे सर्वेशन सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रास है पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे बख ध्यान लगायो नाथ फिरयो लिये सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिखयान सो बैठ कैसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सैरा काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पिछाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पासा को मेरे तान को पूजन तहयो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पासा को मेरे तान को पूजन तहयो पूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दया रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो परत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दय मोहे बचाव हो सुखी बसा मोर परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करी है सब बैरन कवाज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा
तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे बरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करी हो रक्षा, राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बेसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, बेदराज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो, आदंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिटी ते कुंचर स्थूला, सपर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा, आप अपनी बूझ उचारा, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद आर आलमा,

जाको बह परवार कहो नानक थेर कछ नहीं सुपने जाओ संसार सज्जना सच्चा पाते साहो सिर सांद साहो जिस पास बैठया सो ही सबना दा वेसाहो सज्जना सच्चा पाते साहो सिर सांद साहो जिस पास

जेह प्राणी हम मैं तजी करता राम पछाना कहो नानक वहो मुक्त नर एह मन साची माना पै नासन दुर्मत हरना कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तेह कामा।

जौ सुपनार पेखना ऐसे जग कौ जाना इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवाना निस

प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जौ सुख कौ चाह सदा सरन राम की लेह कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिराना।

जन्म जन्म भरमत फिरयो मिटयो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपय पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिटयो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदयो राख ले हो भगवान बाल जवानी अर बिरध फोना तीन अवस्था जाना कहो नानक हर भजन बेना।

राम नाम और मैं गह्यो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटाय दर्श तुहार होए राम नाम और मैं गह्यो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटाय दर्श तुहारो होए मुंदामणि महला पंजवा

आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल तोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रख हो अरदास जियो पैज रख हो हर जन है केरी हर दे हो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कह साबास जियो मेरे सिख सुनहो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई

0: देखो बाइक चलता है। चलता नहीं है।
1: वाहेगुरु जी आप कर लो
2: उल्लिया बह जाओ फिर कोई
3: नहीं
2: चलता
4: वो
2: नहीं चलता
4: लगता
2: है।

0: सकल प्रकार के अंतर जामी
1: अपनी गत जान हो आपे
0: अपन संग आप प्रमाते
1: तुमरे उस तत्व ते होए
0: नानक अवन जान सकोई
1: सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म
0: हर का नाम जप निर्मल कर
1: सकल क्रिया मह उत्तम क्रिया
0: सासंग दुर्मत मल ही
1: सकल उद्यम मह उद्यम भला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सकल बानी मह अमृत बानी
0: हर को जसन रसन बखानी

0: जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: साकर को रख मन माहे
0: जे प्रसाद सुगंध तन लावे
1: जिसको सिमरत परम गत पावे
0: जे प्रसाद वसै सुख मंदर
1: जिसे ध्याय सदा मन अंदर
0: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग
0: जे प्रसाद पाठ टंबर हंडावे
1: जिसे त्याग का टबर लवावे
0: जे प्रसाद सुख से सुई जाए
1: मन आठ पैर ताका जस गावीचे
0: जे प्रसाद सब को माना है
1: भक्ता को जस रसन बखाना
0: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जब दरगह मान पावे है
1: नानक पद सेती कर जावे
0: जे प्रसाद आरो कंचन देही
1: जे लावो तिस राम स्नेही
0: जे प्रसाद तेरा ओला रहतो
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन शरणी पर ठाकर प्रभु ताके
0: जे प्रसाद तुझको न पहुंचाए जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकी भक्त करे
0: जे प्रसाद अपूखन पहरी जाए
1: मन दे सिमरत पे आलस की जाए
0: जे प्रसाद असब हस्त असवारी
1: मन दे प्रभु को कबू ना बिसारी
0: जे प्रसाद बाग मिलमिलक तनाओ
1: राख रोए प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठत बैठ सत से त्याई
0: तिसे त्याई जो एक अलख है
1: इहा हुआ नानक तेरी रखा
0: जे प्रसाद करह पुन बहुत दानो
1: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
0: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: इस प्रभु को साथ साथ चितारी
0: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
0: जे प्रसाद तेरी निकी जात
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: जे प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुरपशा नानक जस कहे
0: जे प्रसाद सुनह कर नाद
1: जे प्रसाद देखे विस्माद
0: जे प्रसाद बोला है अमृत रसना
1: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जे प्रसाद पूर्ण फल है
0: जे प्रसाद परम गत पावे
1: है जे प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो
1: हो गुरपशा नानक मन जागो
0: जे प्रसाद तू प्रगट संसार
1: जिस प्रभु को मूल न मनो विसार
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप
1: हे मन मूर्त ताको जाप
0: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: जिसे जान मन सदा हजूरे
0: जे प्रसाद तू पावे साच
1: हे मन मेरे तू सास राज
0: जे प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जपै जप सोए
0: आप जपाए जपै सो नावो
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल बिगास
0: प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
0: सर्वधान प्रभु तेरी माया
1: आपो कछु न कीनू लै

ब्रह्म ज्ञानी सदा जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मलाओ ब्रह्म ज्ञानी कै मन हो प्रगास ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी सेजन भय ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी का होए सुपला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदाहर ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जान भेद ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाय दे अखर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ करता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ

तैसा हक तैसा उस रोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मन तैसा अभिमान वरताए साई जुगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ आपे करण करामन जोग पसरे आप हो अंतरंग जैसी मत दे तैसा प्रगास।

कैकोट पार ब्रह्म के दास कैकोट तत् के बेते कैकोट नाम रस पीबह कैकोट।

0: जो तिस भावै सोई करावै,
1: इसके हाथ वो इसता सब कुचले,
0: जो तिस भावै सोई करे,
1: अनजानत बिखिया मैं है रचै,
0: जे जानत आपने आप बचै,
1: परमे भूला दह दिसतावै,
0: निम कोआ चार कुंड फिरे आवै,
1: हर कृपा जिसे अपनी भगत दे,
0: नानक दे जन ना मिले,
1: फिर मैं नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब निवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवै,
0: सत्काल दंज प्रगटावै,
1: जाको अपनी करै बख्शीस, जियो पिण सब तिसकी रास, अपनी बणत आप बनाई, इसका बाल नाही इस हाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो।

सर्व राष्ट्रपति जिसके अंतरराज और महादेव भोजन में जो बनबंत आपस को कर्मंत कहावे भूमिका जो करग महानव कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे धर्मता हुई कर गिरबावे बहुलश्कर मानुक ऊपर करे आस शब्दे आप जाने बलवंत किसान बदाय आप अहंकारी गुर प्रसाद जाकर मिटे अमान होड कर्म कराए हो तारे तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे आपस को जो भला कहावे सर्व क्रियन जाका मन होए जब लग जान मुझसे कछ होए जब ही जान मैं कुछ करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मग्न संगमाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे सहस कटे लख उठतावे अनक भोग दिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राजा नाम रंग सर्व सुख होए।

0: मछली दड़बड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं रह जाए,
0: जो पाप निंदा नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बहार दिल खेत माहे दहेला।
1: संत का दुखी तरते रह तो,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहे तो।
1: कीर्त निंदक का तुरही पया,
0: नानक जोत पावे सोई किया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सकाइए,
0: संत का दुखी न मरे न जीवाइए।
1: संत के दुखी की पूजा न आशा,
0: संत का दुखी और चले निराशा।
1: संत का दुख न तुष्टा कोए,
0: जैसा भावे तैसा कोई होए।
1: पया कीर्त न मेटा कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब घट तिसके ओह करन हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: प्रभु की
2: उस्ताद करो दिन रात,
0: इसे त्यागो सास ग्रास।
1: सब कुछ वर्ता तुसका।

0: मन की टेक बिठी सब जान
1: देवन को होइते भगवान
0: के दिए रह
2: मारा राखे को आप देसका हुकम बूझ सुख होए सिमर सिमर सिमर प्रभ सो उस्तत मन मह कर निरंकार।

0: सगल की चिंता जिस मन माहे
1: हे
0: मन मेरे सदा हर जाप आपन किया कछु न होए तिस बिन नाही तेरा किछ काम रूपवंत होए नाही मोह तनवंता होए क्या को गरबा आत सूरा जे को

यो मंदर कौ थम थमन यो पाखान नाव चढ़ तरा यो अंधकार दीपक प्रगास यो महाउद्यान मह मार्ग पावा तिन संतन की बाछो धूर मन मूरख काहे बिल लाइया दुख सुख प्रभ देवन हार जो कछ करै सोई।

0: में कोई न लाखन।
1: प्रभ के सेवक को न पहुँचा,
0: प्रभ के सेवक पूछते पूछे,
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया,
1: नेकी कीरी मह कल रखा,
0: पसम करे लश्कर कोट लाखन,
1: जिसका सास न काढ़ता
0: पा, राख दे कर हाथ,
1: मानस जतन करत बहु पात, मारा न राख अवर न कोए,
0: सर्व जिया का राखा सोए,
1: काहे सोच कर हरे प्राणी,
0: जप नारक प्रभु अलख बढ़ाणी,
1: बारंबार बार प्रभु जपिया,
0: अमृत मन तंत्र पिया,
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया,
0: शावर नाही दिष्टाया।

मन मेरे तन की ओट लेहे जिन जन अपना प्रभु पछाता जिसकी सरन सर्ब सुख पावे अवर से।

जन्म मरण के मिटे अंधे से पहुँचू का निर्भय होए बसे जैसका सा तिन कृपा तहरी चित पाई चूके प्रम गवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही।

0: कवन सनाथा
1: राज रंग माया बिस्थार
0: कहो कवन षटकार
1: आस हस्ते रथ असवारी जिन दिए तिस बुझा न बिगाना गुर की मत तू लेहे आने हर की भगत करहो।

0: जाओ।
1: अष्टपदे जब कार्य हो कछन दृष्टिता, जब धारी अपन सुन संवाद, जब इसका वर्ण चेहन न जापता,